भय प्रगास साध कै संग राज रजन अपनी कल तारी अनक बार नानक बलिहारी सरोग साथ ना चले बिन भजना बिखिया सगली छार हर हर नाम कमावना नानक हो तन सार अष्टपदी संत जी नाम मिलको विचार।

हित कर जाए बसाए अविनाशी का नानक काटी जम पासे तात विचार है जन साचा जन्म मरै सो काचो काचा आवा गवन मिटे प्रभ सेव आप त्याग सरन गुरुदेव हिमरत जन काहे उदार हर हर सिमर प्राण आधार उनको पवन छूटन हार सिमत शास्त्र वेद विचार हर की भगत गुरु मन लाए मन वंशत नानक फल पाए संगना चालस तेरा तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सोत मीत कुटुंब और बनता इनते कहो तुम कवन सनाथा राज रंग माय विस्तार इनते कहो कवन छुटकार अस हस्ती रत अस वारी झूठा डम झूठ पासार जिन दिए तुस बोझे ना बेगाना ना विसार नानक भजता।

सार पूत सत हर को नाओ सहसुब नानक गुन गाओ गुन गाव तेरी उदर समैल बिन सजय होम बिक फैल हो चंत वसै सुगनाल सास ग्रास नाम संभाल छाड़ सियानम सगनी मना साध संग भावे सड़ताना

जब कार ही कशन दृष्टे ताप अपन तब कहते होता जर जब तारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध के संग गमात जब इसका पर्ण चिन्ह न जापत तब हरक शोक किसे व्यापत जब अपन आप आपाल ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम आपन खेल आप वर्ती जा नान करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुकत कौ किस कौ गनी जब एक है हर अगम पार।

पूर्ण पूर्ण रहे दयाल, सब ऊपर हो बुद्ध कृपाल, अपने कर्तव्य जाने आप, अंतर जम रहे व्याप, प्रतिपाल जियन बाप, आत जोर जोर ज्यो सो तुसै ते आत, जिस बाबत सलय मिलाए, भगत करे हर के गुण गाए, मन अंतर विश्वास कर मान्य, करन हार नानक के जान्या, जन लागा हरे कहना, तिसकी आस न बिरति जाए, सेव को सेव बने आई, हुकम बूझ पर बद पाए, इस ते ऊपर नहीं विचार, जागे मन बसिया निरंकार, बंतन तोर भय निर्वैर, अंदन पूजे गुर के पैर, एह लोक सुखिए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले, साथ संग मिल करो आनंद, गुण गावो पर परमानंद, राम नाम तत कुद विचार, दुर्लभ देखा करो उदार, अमृत वचन हर के गुण गाओ, प्राण तन का है सुहाओ, आठ पहर प्रभ खो नेरा, मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा, सुन उपदेश हृदय बसावो, मन इच्छे नानक फल पावो, हल्द पद लेहो सवार, राम नाम अंतर उतार, पूरे गुरु की पूरी दिखिया, जिस मन बसे सारे परिखिया, मन तन नाम जपो ले बुलाए, दुख दर्द मन ते पौ दाए, सच व्यापार करो व्यापारी, दरगाह ने बैखे तुम्हारी, एक अड्डे रुख मन माहे, नानक बहर न आ जाए, तिस ते दूर कहाँ को जाए, उबरे रखन हाथ आए, निरपा जपै सगल पा मिटै, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै, जिस प्रभ रख तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख, चिंता जय मिटै अहंकार, तिस जन को कोई ना पहुँचन हार, स्वरूप ठाठा गुण सूरै, नान दागे कार्य पूरा, मत पूरी अमृत जाग दृष्ट, दर्शन पेखत उदृत सृष्ट, चरण कमल जागे अनूप, सफल दर्शन सुंदर हारूप, तन सेवा सेवक परवान, अंतर जामे पुरख वरदान, जिस मन बसै सो हो।

प्रगट सब लोए, सब ते ऊच पाए अस्थान, बाहर न होवै आवन जान, हार तन खाड़त लै जन सोए, नानकर सह प्राप्त होए, खेम शांत रिद नव निद, बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध, विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इसनान, चार पदार्थ कमल प्रगास, सब कै मद सगल ते उदास, सुंदर चतुर तत का बेता, समदर्शी।

एक ओंकार सतगुरु प्रसाद राग माला राग एक संग पंच बरंगन संग अलापै है अठ हो नंदन प्रथम राग भैरो वैकरही पंच रागनी संग उचरही प्रथम भैरवी बिलावली पुन्याकी गा वह बंगुली पुण्य असलिखी की पई बारी भैरों की पंचो नारी पंचम हरख दिसाख सुनावै बंगाल मद माधव गावै है ललत बिलावल गावही अपनी अपनी भांत अष्टपुत्र भैरव के गावै गायन पात्र द्वितीया माल कौशक आलापै है संग रागनी पंचो थापै है गूंड करी अरदेव गंधारी गंधारी सिहुति उचारी तनासरी ए पंचो गाई मालरा कौशक संग लाई मारू मस्त अंग मेवारा प्रबल चंड कौशक उभारा खौखट औ भौर आनंद गाए अष्टमाल कौशक संग लाए पुने आयो हिंडोल पंचनार संग अष्ट सुत उठै तान कलोल गायन तार मिलावही तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहिरी लै भर जा संगलाई पंचो वार जा सुरमानंद भास कर आए चंद्र बिंब मंगलन सुहाए सरस बान आओ आहे बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्टपुत्र मैं कह

0: कहे कबीर सुनो रे संतो खेत ही करो नबेरा, अब की बार बख्श बंदे का बाहर ना पाओ जल फेरा। सतगुरां दे हुक्म अनुसार माता गुरदेव कौर जी जिन्हें स्वासा रूपी पूंजी लैके मातलोक ते आए सन उसनों पूरा करने पिछले दिन सतगुर चरणा विच जावरा जी सतगुर कृपा करन विछड़ी रूह अपने चरणा कमला च निवास बख्शिश कर पिछे परिवार को भाणा मनन का बल बख्शिश कर अरदास सतगुर चरणा विच है। सतगुर कृपा करन पिछे परिवार को सेवा सरन ते बाणी दियां बाणी पढ़न दी दाता बख्शिश कर अपने चरणा कमला जोड़न। आप जी ने भी अरदास करनी सतगुर कृपा करके विछड़ी रूह सदीवी काल अपने चरणा कमरे निवास बख्शिश कर। आओ जिन्ना समा कीर्तन का समय की समाप्ति है जी बड़ी सत्कार योग हैड ग्रंथी साहब आप जी ने गुरु इतिहास गुरमत विचार श्रवण कराने जी सैनिक सेवा प्रवान करने जी। बुलाओ जी फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आप संगतां नूं गुरु साहिब जी दी पावन पवित्र गुरबाणी का कीर्तन सरवण करा सन बहुत ही सत्कारयोग गुरु घर दा हाजूरी रागी जत्था भाई साहब भाई जसविंदर सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद समुचे जत्थे दा। हुण बेनती करदे आं बहुत ही सत्कारयोग गुरु घर दे हैड ग्रंथी साहिबान सत्कारयोग भाई साहब भाई रविंद्रपाल सिंह जी वो आप संगतां नूं 20 मिनट वास्ते सतगुरां दी पावन गुरबाणी दा कीर्तन गुरबाणी दी कथा विचारा सरवण कराउणगे। सो अज दे विशेष समागम जिहा चिरी लिखिया तिहा हुकम कमाए कल्ले आवे नानका सदे उठी जाए दे मावा कंसार। बहुत ही सत्कारयोग माता गुरदेव कौर जी उन्हां दी अंतम अरदास विच बेअंत संगतां हाजरियां भर रहीआं ने विशेष समागम हो रहे ने। गुरु साहिब जी कृपा करन पढ़ी सुनी गुरबाणी दा भाव उस विछड़ी रूह नूं बख्शिश करके अपने चरणों के निवास बख्शिश करन परिवार को भाणा मनन का बल बख्शिश करन। आओ बड़े प्यार सत्कार दे नाल कथा विचारा सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

बोलो जी वाहिगुरु, एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याय, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नाउ सिमरो श्री हर राय। श्री हरि कृष्ण।

शुरू कर दिए, शुरू कर दिए, करिए। हाँ चलो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गौड़ी सुखमन।

0: जय मात पिता सुत मीत न पाई,
1: मनुआ नाम तेरे संग साई।
0: जय महा प्यान दूत जम बले,
1: केवल नाम संग तेरे चले।
0: जय मुश्किल होवे अत भारी,
1: हर को नाम किन माए उतारी।
0: अनक पुने चरण करत नहीं तरे,
1: हर को नाम कोट पाप पर हरे।
0: गुरमुख नाम जपो मन मेरे,
1: नानक पावो सुख कनेरे।
0: सगल सिष्ट को राजा दुखिया,
1: हर का नाम जपत हो सुखिया।
0: लाख करोरी बंद ना परे,
1: हर का नाम जपत निस्तरे।
0: अनक माया रंग तिख ना बुझावे,
1: हर का नाम जपत अगावे।
0: जे मार्ग एव जात केला,
1: तै हर नाम संग होत सुहेला।
0: ऐसा नाम मन सदा ध्याइए,
1: नानक गुरमुख परंगत पाइए।
0: छूटत नहीं कोट लखबाही,
1: नाम जपत है पार पराई।
0: अनक बिघन जय आए संघारे,
1: हर का नाम तत्काल उधारे।
0: अनक जोन जन मैवर जाम,
1: नाम जपत पावे विश्राम।
0: ओ मैला मल कबु न धोवे,
1: हर का नाम कोट पाप खोवे।
0: ऐसा नाम जपो मन रंग,
1: नानक पाइए साध के संग।
0: जे मार के गने जाए न कोसा,
1: हर का नाम हुआ संग तोसा।
0: जय पेंडे मैं अंध गवारा,
1: हर का नाम संग उजियारा।
0: जहां पंत तेरा को न सियानू,
1: हर का नाम ते नाल पछानू।
0: जय महा प्यान दू तपत बहु काम,
1: नाम की तुम ऊपर शाम।
0: जा त्रिखा मन तुझ कर खै,
1: नानक हर हर अमृत बरखे।
0: भक्त जना की भरत नाम,
1: सांजना के मन विश्राम।
0: हर का नाम दास की ओट,
1: हर के नाम उतरे जन कोट।
0: हर जस करत संत दिन रात।

0: रमैया के गुण चेत भरानी
1: गमन मूलते कवन दृष्टानी
0: जिंतु सास वार श्रृंगारिया
1: गर्भ गण मै जिने उबारिया
0: बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध
1: पाजो बन भोजन सुख सूद
0: बिरद पिया ऊपर साख सैन
1: भुख पियाओ बैठ को देन
0: एहे निर्गुण गुण कछु ना बूझै
1: बख्श लियो तो नानक सीजे
0: जेह प्रसाद तारु पर सुख बसै
1: सात प्रास मीत बनता संग हसै
0: जेह प्रसाद पीवे शीतल जला
1: सुखदाई पवन पाव कमला
0: जेह प्रसाद भोगे सब रसा
1: सकल सामग्री संग साथ बसा
0: दीने हस्त पाव कर नित रसना
1: तिसे त्याग वर संग रचना
0: ऐसे दुख मुड़ अंध व्यापे
1: नानक।

0: ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास,
1: जैसे तारे उपरे आकाश।
0: ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सतर समान,
1: ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान।
0: ब्रह्म ज्ञानी उच्च ते उच्चा,
1: मन अपना है सब ते नीचा।
0: ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे,
1: नानक जिन प्रभ आप करे।
0: ब्रह्म ज्ञानी सगल की रेना,
1: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना।
0: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया,
1: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया।
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी,
1: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृतवर्षी।
0: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता,
1: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युक्ता।

0: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास,
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश।
0: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता,
1: ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता।
0: ब्रह्म ज्ञानी कह होए अचिंत,
1: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत।
0: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभाप,
1: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप।
0: ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ भागी पाई है,
1: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए।
0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर,
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर।
0: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे,
1: ब्रह्म ज्ञानी के सकल मन माहे।
0: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद,
1: ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश।
0: ब्रह्म ज्ञानी का कथ्या न जाय अधाकर,
1: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर।
0: ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने,
1: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने।
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार,
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार।
0: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता,
1: ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता।
0: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त।

0: कोट होए पुजारी,
1: कई कोट आचार्य कुमारी,
0: कई कोट भय तीर्थवासी,
1: कई कोट मन ब्रह्म दासी,
0: कई कोट वेद के स्रोते,
1: कई कोट तपीसर होते,
0: कई कोट आत्म ध्यान धारे,
1: कई कोट कब का विचारे,
0: कई कोट नव तन नाम ध्यावे,
1: नानक करते का अंत न पावे,
0: कई कोट भय अभिमानी,
1: कई कोट अंध ज्ञानी,
0: कई कोट कृपण कठोर।

0: जित जित लावो तित तित लगना,
1: नानक करते की जाने करता रचना।
0: कई कोट सिद्ध जति जोगी,
1: कई
0: कोट पंखी सर्व पाए,
1: कई कोट पाथर बिरख ने पजाए।
0: कई कोट पवन पानी बैसंतर,
1: कई कोट देश भूमंडल,
0: कई कोट सस्यर सोन केतर,
1: कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र।
0: सगल समग्री अपने सूत धारे,
1: नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारे।
0: कई कोट राजस ताम साकत,
1: कई कोट वेद प्राण सिमरत अशाशत।
0: कई कोट किए रतन संबंध,
1: कई कोट नाना प्रकार जंत।
0: कई कोट किए चिर जीवे,
1: कई कोट गिरी महेश्वर थीवे।
0: कई कोट जखर किन्नर पसाच,
1: कई कोट भूत प्रेत सुकर मिर्गाच।
0: सब ते नेरे सब हूते दूर,
1: नानक आपल पत्र आपर।

0: दुखी को दरगह मिले सजाए,
1: संत का दुखी सदा सहगाइए,
0: संत
1: के दुखी की पूजा रया सा।

0: उस पुरख नाहीं कदे विनाश
1: मन प्रगटे गुणदास
0: आठ पै हर का नाम ले
1: सच उपदेश को दे
0: वो माया के संग न ले
1: पा रखे हर हर एक
0: अंधकार दी ऊपर गासे
1: नानक परम दुख

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं चौपाई पुनराशिश का काटा सीसा श्री अस्केत जगत के ईसा पोहपन ब्रेस्ट गगन ते पई सब हिन आन बधाई दई धन धन लोगन के राजा दुष्टन दाहा गरीब निवाजा अखल भवन के सृजन हारे दास जान मोहले हो उबारे कब्यो बाच बेनती चौ पई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम काव हो आप हाथ दै मोह बचाव हो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दै करियै सब बैरन को आज संघरियै पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम है छाड़ कोई अवर न त्याऊं जोबर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन सत्र हमारे मारिया है आप हाथ दै मुझे उबरिया मरण काल का त्रास निवरिया हो जो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जो करियो रक्षा राख ले हो मोहे राखन हारे साहिब संत साए प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दशकंता काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जूठियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहि हमारा

नमस्कार तिसहि को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मुँह बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधुन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जब उदकर्ख करा कर तारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब अकर्ख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब धार आप अपनी बूझ उचार तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम

कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरन सुभ्राता। किलबिख सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस्तुज भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन वांछित फल पावै सोई, दुख ना तिसै व्याप्त कोई अड़ेला। सुनै गुंग जो याहे, सुरसना पावई। सुनै मूढ़ चित लाए, चतुरता आवई। दुख दर्द पौ निकट न तिन नर के रहै, हो जो या की एक बार चौपई को का है। चौपई संबत सत्रह है, सहस पणिजय अर्ध सहस फुन तीन कहिजय। भाद्रव सुदी अष्टमी रवारा, तीर सद्रव ग्रंथ सुधारा। स्वैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते कौ आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सवै, बहु भेद कहे हम एक न जान्यो। श्री अस्पान।

मुकंद मनोहर लक्ष्मी नारायण द्रुपति लजाने वाले उधारण कमला कंत करे कंतुहला नंद मनोदी न संगा अमोघ दर्शन या जूने संभाओ अकाल मूर्त जिस करे नहीं खाओ अवनाशी अवगाती अगोचर सब किश तुझ ही है लगा श्री रंग वैकुंठ के वासी मश कश कूर में आ गयो तरासी केशव चलत करे निराले कीता लोड़े सो होएगा निरा

नहीं कंटक नय केवल कही है तनंजय जल थल है मही है मित लोक पै आल समीपत अस्थिर थान जिस है पग्गा।

है भी गाँव दंकार आशल्य डोलो जूत स्वरूपी सब जग मौलाओ सो मिले जिसे आप मिलाई आपो कोई न पावेगा।

ऊट गही जगत पित सरनाया भय भयानक जम दूत दूतर है माया हो कृपाल इच्छा करे राख साध संतन कै संग संगा दृष्टमान है सगल मिथेना एक मांगो दान गोविंद संत रेना मस्तक लाए परम पद पाव जिस प्राप्त सो पावेगा जिनको कृपा करी सुखदाते तिन साधु जन लै दिदे पदाते सगल नाम निदान तिन पाया अनहद सबदो मन बाजंगा।

चरण कमल शरणाई आया साध संग है हर जस गाया। जन्म मरण सब दुख निवारे जप हर हर भौनी काल का। समराथी अगत

जिस रूप न रेख्या कुल नहीं जाती, पूर्ण पूर रहा दिन राती। जो जो जपै सोई बड़ भागी, बौड़ न जो नी पावना। जिसनू विसरै पुरख विधाता, जलता फिरै रह निधदाता। अकिरत खण को

पौड़ी गुरति ज्ञान पाया यत खड़ग करारा दूजा भरमगढ़ कटिया मोह लोभ अहंकारा हर का नाम मन वसया गुरु शब्द विचारा सच संजम मत जूतमा हर लगा प्यारा सब

चौथा सागर देखो डरम पैते दै डर नाहे गुर कै शब्द संतोखिया नानक विकसा नाए महला चौथा।

दुख पावही। अंधे आपना पछाननी दूजै बच जावही। अत क्रोध सौ लूज दे अगै पिछै दुख पावही। अर्जीव अहंकार न पावी वेद कूक सुनावहि। अहंकार मुए से विगति गए मर्जन में फिर आवे। श्लोक महला तीजा कागो हुए नयूजला लोहे रावण पार। पिरम पदा

नवखण मध्य पूजियाओ अपने तज विचारो मत सच्चाई अखर भुल जाई चौके पिटे न कोई उठी चौके नानका सच्चांगे को सोई महला तीजा आप उपाई करे आप आपे नजर करे आपे दे बड़े आईया कौ नानक सच्चा सोए पौड़ी।

लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करी जिसनु पाई सा पाई दविंदर सिंह जी सोडी बड़े उत्साह नाल इना शब्दां दी कथा करके उस पुरानी याद नु ताजा करते हुया पाई सा पाई गोपाल सिंह जी नु श्रद्धांजलि अर्पण कीती है। ते इना शब्दां दा संगीत उसे पुराने ढंग नाल ही महान संगीतकार श्री के एस नरूला जी ने दिता है। टी सीरीज सुपर कैसेट्स वालों ए उम्मीद करते हां कि सारे माई पाई इस दिती हुई श्रद्धांजलि दा रस मानणगे ते सुपर कैसेट्स नू धन्नवादी बनाउणगे।

जे सतगुरु नदर करे। निमक एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए। ऐ सतगुरु, आ निमक मात्र भी तू मेरे हिरदे विच वसदा है ना, भाव जिन्ना समा अख चमकण नूं लगदा है, तू इन्ना समा भी मेरे हिरदे विच वसदा है ते मेरा हिरदा ठंडा हो जाता है, मेरा तन मन शीतल हो जाता है। ऐ सतगुरु बख्शिश करो, सदा ही मेरे हिरदे विच वसिया करो, नाम नाल मेरी झोली भर देवो। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे, किथे खुशियां किथे खेड़ा जिथे सतगुरु दी नदर होवे। ते सतगुरु दी नदर किथे होंदी है, जिथे सिमरन है, जिन्हां घरां विच नितनेम है, प्रभु दा जाप है, उथे सतगुरु दी नदर होंदी है। छेवें सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज, सतगुरां दे समें भाई पल्ला होया है, मां ते पुत्र कखां दी कुली विच गुजारा करदे ने, हथ दी गरीबी है, सवेरे खा लेंदे ने ते शाम दा फिक्र लगा रहिंदा है। पर सतसंगियो, इस मां ने बच्चे नूं सिख्या किहो जी दित्ती है, भी ऐ पुत्र तू मैनू कम तो जान तो पहला कीर्तन सुना के जाया कर, नितनेम सुना के जाया कर, हर रोज कम तो जान तो पहला पल्ला अपनी अम्मा नूं नितनेम सुनांदा है ते फिर कीर्तन भी एक घंटा सुना देता है, फिर काम ते जाता है। एक दिन कीर्तन कीता, जदों टुरन लगा ना घरों काम वास्ते, ते अम्मा की तक रही है, पल्ले दे अखां विच हंझू ने, चेहरा भी उतरिया उतरिया लगता है। पुत्र तू ठीक नहीं है, उदास लगता है। अम्मा तू आखदी सी वी जिहड़ा मन ला के कीर्तन करदा है, सुनदा है, बाणी पढ़दा है, जो मंगे उसनू मिल जांदा है, तू आखदी सी ना भई पुत्र तू की मंगदा हुंदा है। है मेरी अम्मा, मैं हर रोज कीर्तन करके ये अरदास करदा भई सतगुरु असी बड़े गरीब हां, तू बड़ा दूर वसदा है, मेरे कोल इन्ने पैसे नहीं कि मैं अपनी अम्मा नू लेके तेरे दर्शन कर जावां, किवें तेरे दर्शनां नू तड़फदी रहिंदी है। तू जे किते बख्शिश करे ते गरीबां नू घर आके दर्शन दे जा। भुल्ले दी मां ने सुनिया ते छाती नाल ला लिया, सतगुरु कोई गल नहीं, कोई उलांबा नहीं, असी गरीब हां, रहण वास्ते चंगा मकान नहीं, खान वास्ते चंगा प्रशादा नहीं, कोई गल नहीं, पर तेरा लख लख वारी शुक्र है, तू मैनू नाम दियां दातां दित्तियां, किहो जिहा पुत्र बख्शिया, नाम दियां दातां दित्तियां। पुत्र जरूर अपनी भावना विच फर्क हो सकता है, गुरु दियां रहमतां विच कोई फर्क नहीं होता। पल्ला नित कर्म अनुसार कम ते गया है, सारा दिन मेहनत मजदूरी कीती है, आ जदों शाम नूं घर वापस आ रहा है ना, ते रस्ते दे विच पल्ले नूं एक मित्र ने रोक लिया, कोई पलिया
जिस गुरु दा कीर्तन तू रोज करदा है अलागे अपने पिंड विच ओ गुरु आए हुए ने। पल्ले नू चा चढ़ गया, गुरु आए हुए ने। नस पिया इस पासे दौड़ के गया, मैनू ही दर्शन देन आए ने। जदों इस पिंड विच पुजा ते आ सामने तख्त ते छेवें सतगुरु हरगोबिंद महाराज बैठे ने। बहुत सारी संगत दर्शन करन वास्ते खलोती है, लाइन लगी हुई है लंबी, ते विच पल्ला भी जाके खलो गया। की तक रहा है, जिन्हां नूं मालक ने तन दिता है उन्होंने तन दे ढेर लाए पए ने। कोई सुंदर रुमाला रख देंदा है, कोई दुशाला सतगुरु अगे रख देंदा है। पल्ले ने भी अपनी जेब विच हाथ पाया, सत्संगियो जेब दे विच कुछ भी नहीं, निका भी पैसा नहीं, नाले अग्गे नू नमस्कार करन वास्ते हो ही जांदा है। मन दे विच बड़ा दुख पार आया, सारा दिन मजदूरी ते कीती है पर अज दिहाड़ी नहीं ना मिली। अब मजदूर दा केड़ा जोर होंदा है, बेशक मालक आख देवे भी कल नू कठे ले ले, अज कोई पैसा नहीं। पलिया किड़ा तड़पदा हुंदा सी गुरु दे दर्शना नू, आज तेरे भाग जागे ने ते नमस्कार करन वास्ते निका भी पैसा नहीं। आज ते इंज लगदा है जिमें सारी गरीबी आज ही आई होवे। आज पता लगा गरीबी किड़ा डाढ़ा दुख हुंदा है, बड़ा मन बैराग पार आया। नाले नमस्कार करन वास्ते अगे नू होई जांदा है ते जेब दे विचों एक रुमाल कढ़िया है, ते रुमाल दे विच की है एक गुड़दी रोड़ी बनी हुई। आ गरीबी दे विच कई बार एहो जे दिन भी आ जांदे ने, गुड़दी रोड़ी खा लेनी, पानी रज के पी लेना, रुमाल जेब चों कढ़िया है, नाले अगे हो ही जांदा है मत्था टेकण वास्ते। ओ मेरे सतगुरु दिलां दियां जानण वाले दूरों ही इहदे वल देखी जांदे। जदों असी गुरु घर दी दलीज ते पैर रखते हां ना, साडे मन दे विच की है गुरु बोलण तो बगैर ही जान लैंदा है। इहदे मन दे प्यार नूं गुरु दूर बैठे जाण गए देखी जांदे ने। सतगुरु आप अपने आसन तो उठ के अगे नू आ रहे ने। संगत हैरान होई, किन्ने नमस्कार करन वास्ते खलोते ने ते सतगुरु उठ के टुर पए। इधरों पल्ला मथा टेकन वास्ते अगे नू बढ़ रहा है पर नीमी पाई हुई है, सोचा विच डुबिया होया है। सतगुरु गरीब हां, कोई बेटा नहीं लिया। इन्हें नू सतगुरां ने आके आवाज मारी, लिया वे पलिया तेरियां गंडा मैं खोल देगा। रमाल पकड़िया होया है ना, अच गंडा खोल रहा है। लिया तेरियां गंडा मैं खोल देगा। सतगुरां नू देखिया ना, हैरान हो गया। सतगुरां ने रमाल इहदे हाथ चों पकड़ लिया, आप गंड खोली ते एक गुड़ दी रोड़ी कढ़ी ते मुंह दे विच पा लई। ओए पल्लिया तेरे जिन्नी मिठी पेटा ते अज कोई भी नहीं लेके आया। किन्नी मिठी पेटा ले आया। पल्ले ने सतगुरां दे चरण पकड़ लए। सतगुरु मां कोलों तेरी सोभा सुनदा हुंदा सी, तू गरीब नवाज है, मेरी अम्मा गल्लां करदी हुंदी सी,

इन्हें नूं जा के पल्ले ने आवाज मारी, मां आ देख सतगुरु आए। मां अखां मल मल के देखदी है, यकीन नहीं आता साडे घर कखां दी कुली विच आए। आप सतगुरु इस झुगी विच आए ते मां ते पुत्र तकी जांदे, सतगुरु पुंजे ही बैठ गए, प्यार दे वजे हुए। मां ने जिहड़ा भोजन पल्ले नहीं रखिया होया है उही लिया के सतगुरां दे मोहरे रख दिता। सतगुरु छक लवो, नहीं पलिया मैं ये नहीं छकना, जेड़ा भोजन मैनू रोज छकांदा है उही भोजन छका। सतगुरु असी गरीब हाँ, बस इसे तरह लून नाल प्रशादा छकते हैं, छक लवो। नहीं पलिया जेड़ा रोज छकांदा है उही छका। मां आखन लगी, सतगुरु तुसी ते साडे घर पहली बार आए। नहीं पलिया मैं रोज ही आंदा, आ जदों तुसी मां ते पुत्र दोनों जाने अखां मूंड के कीर्तन विच जुड़ जांदे हो ना, ते मैं रोज ही तुहाडे कोल आके बैठा हुंदा, रोज ही उही कीर्तन दा भोजन छकण वास्ते आया हां, कीर्तन दा भोजन ही मैनू छका। अज मां ते पुत्र ने कीर्तन कीता, गुरु बैठे सुन रहे ने, असीसां दित्तियां ते गुरु ने खुशी नाल झोलियां भर दित्तियां। पल्लिया अज ते मैं तेरे ते नदर करन वास्ते आया हां, तेनू खुशियां देण वास्ते।

0: हर का नाम जपतो येशु किया, हर का नाम जपत निस्तरे, हर का नाम जपत कावे, ऐ हर नाम समोर सेला, नानक गुरमुख पर बाये, नाम जपते पर पराई, हर का नाम तत्काल उदारे, नाम जप पाए विश्राम, हर का नाम कोट पाप होए,
1: ऐसा नाम जपो मन रंग,
0: नानक पाइये साध के संग,
1: जे मार के गरे जाए ना कोसा,
2: हर का नाम वो संतोषा,
1: जे पहने मा अंध गुबारा,
2: हर का नाम संग उजारा,
1: जे मन तेरा को न स्वानु,
0: हर का नाम ते नाम जानु,
1: जे महाप्यान तप्त बहु काम,
2: ते हर नाम की तुम ऊपर शाम,
1: जे तिरखा मन तुझ अकर खे,
2: ते नानक हर हर अमृत बर खे,
1: संजना के वर्त नाम,
0: संजना के मन विश्राम,
1: हर के नाम दास की ओट,
0: हर के नाम उदरे जन को।

0: नाम जनको तृप्त भुक्त
1: नाम जनका रूप रंग
0: हर नाम जन परे न भंग
1: नाम जन की वड्याई
0: हर के नाम जिन शोभा पाई
1: नाम जन को भोग जोग
2: हर नाम कसनाई वियोग
1: जिनाता हर नाम की सेवा
0: मानक पूजे हर देवा
1: हर जन के मालिक जीना
2: हर जन को अब्रह्म दीना
1: हर जन के ओट स्थानी
0: हर प्रताप जिन हर न जानी
1: बोध को जिन हर रस राते
0: सुन सुमार नाम रस माते
1: आठ वै जिन हर हर जपे
0: हर का भक्त करने जपे
1: हर की भक्त मुक्त बहु करे
2: नाम जन के तेज रहे
1: मार जते हर को नाम
0: काम के हर हर
1: सबते उत्तम हर की कथा
0: नाम सुंदर दुख लता
1: नाम की महिमा संत ऋद्व से
2: संत प्रताप दुख सब न से
1: संत का संगवट पागी पाई।

साध के संग सदा सुख पावे, साधु के संग अजर सहे, साधु के संग महल पूजे, साध के संग केवल पार ब्रह्म, नानक साधु के कुर्बान है, सा संसाजन नीच कुटुंब निस्तारे, जिस तन के सबको बरसावे, साध के संग शोभा सुरदेवा, सा संग अमृत गुण गायन, नानक साध के संग सफल जन्म, दर्शन के तो निहाल, साध के संग निरंतर रहे, सा संग मिश्रित मिलना, साध के संग में कदम जावे, नानक उदरे सा सुन रसे, सा संग के गुण गाओ, सा संग सर्पण निस्तरे, साधु के संग कर कर डिंटा, सा संगत पे ही हमारी, नानक साथ बेटे से जोग, जेठा से जेठा बने, साथ की उमाई पर पूर, साथ की सोपा सदा व्यंत, साथ की सोपा मूल के मूची, साथ की सोपा साथ बदलाई, नानक साथ प्रभेद न पाई, मन साथ

जैसे जल में कमल लेप, जैसे सुसर को सोप, जैसे राजाग्र को लागे तो आना, जो सुदा को देखो चल लेप।

0: कर्तर कहिरे
1: कई कोट पर दुख न करे
0: कोट माया शर्माहे
1: कई कोट पर देश परमाए
0: लावो लगना
1: नानक करते की जाने करता रचना
0: कई कोट से जति जोगी
1: कई कोट राजे रस भोगी
0: कई कोट पंखी सर्प पाए
1: कई कोट पाथर बरख न बजाए
0: कई कोट पानी बैस अंतर
1: कई कोट देश भू मंडल
0: कई कोट शशि असुर निखतर
1: कई कोट देव दान इंद्र सर शतर
0: मगरी अपने सुतार
1: नानक जिस भावे पे तिन दिस तारे
0: कई कोट राजस्थान सातक
1: कई कोट वेद प्राण सिमरत शास्त्र
0: कई कोट की रत्न समुंदर
1: कई कोट नाना प्रकार जानत
0: कई कोट की जर जीवे।

0: जाने में जो बनवंत
1: सो होत बेस्ट का जंत
0: वापस को कर्मवंत कहावे
1: जन्म मरे बहु जून परमावे
0: दान पुण्य का जो करे गमान
1: सो मूर्खंत अज्ञान
0: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे
1: नानक यहाँ मुक्त आगे सो पावे
0: धनवंता होए कर गुरबावे
1: मार्ग का संग न जावे
0: बोल लक्ष्मण मनोक पर करे।

0: अपन बिस्तार
1: सब सुख निहार
0: उसते पिन कहो कुछ होए
1: अंतर के सोए
0: अपने चलत पर आप करने हार
1: उत करे रंग पार
0: मन में आप मन अपने माए सत सत सत प्रभु स्वामी सच सच सच सब तीन पला पला पला तेरा रूप
1: सुंदर पार रूप
0: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी वाणी
1: सुंदर

समझ न जाने और सर्व लोग सुनिए कर ताके तब मैं तब सर रस में भोगी नानक सतगुरु का किने अंत न पा।

पूजा सत सेवदार नाम सत सत्यागार आपे गुण आपे गुणारी सुत सत सत सुंदा नानक सत सत सोए कर राम के मूल पछाणिया तत ज्ञान के स्थान प्रगटाया तिसे उजिया समाय समाना तागो कहीं न जाए न जाई नारायण में नारायण के एक ठाकुर का सेव सदा पुजारी ठाकुर से सेव निर्मल बिरित प्रभु का सेव नाम के रंग सेव की नाम के निर्मल नानक सो सेव सास सास पारे अपने सेव में सत्र लगाए अपने सेव को नाम बताई ताकि गर्दन को लगा लाके प्रभु सेव से ऊंचे नानक सो सेव दैरिस प्रगटाया बसम करे लसर कोट लाख है तागो राग दे कर हाथ तिसके कर्तव्य ते जात सर्व जियां का राजा सोए जब नानक का बड़ा प्रगटाणी पिय मते मन द्रव्य तिसके शब्द नाही दिसाया नामो सुखा नाम का संग माता नामे राम समाने ओ नानक जन के सतकाम प्रभ अपने जन की निजात प्रभ अपने सिर आसमाए प्रभ अपने का मुख शाने तिसका गुण के न जानो ओ नानक से ही जन पूरे मंदा राम राम जन दे सोजन सर्थो का दाता इसके जर सपा मिटाव

एक सिमर नाम धार चरण कमर में उतारो दृढ़ कर गौ नाम अर्पत संत जना का निर्मल मंत सर्ग रोग नाथ जाए सोतारा सेवा दे पावे सो सुख साधु संग प्रीत सासो बाबा जल की सनी रोग मिटे रोग बदलाए जब नानक करके प्रवान जैसे सावत आवे टाए जाके हृदय से सोए सिमर सिमर सस स्वाओ भगत पाए आत्म प्रकाश कौन आनंद काटी जम्पासी जन्म रे चौका चौकाचा आप जा सतगुरुदेव हर सिमरण दार सिमर साध बिन चरे मन वंशत नानक बल पाए तू क्या लपटा है मूर बना इंदे गौतम कम सनाता इंदे गौतम कम चार चुटा रंग चुटा सारी नाम सार नान पुष्टाना पग बिना कौन उठवे से आने निर्मल होए जमान अतिशीत जन जन के बिजाने आए सुन कहत रहत कहाओ सहस्वासान गुरुदाओ बिन जायो मेरे पैर सास रासना सुमाल सास संपावे सतना यह सुख दरे जेवाल कौन आनंद जाके पसंद लेख एक सिमर एको मन आए मंदन जावे भगवंत पूर्ण पूर्ण उरा प्याप

कथे आप सुनने हार जात इस पाता श्रेष्ठ पाए तुम ते पेन ना ही कुछ होए जा को प्रभ जी आप जाए सो समी तत् का बेता जी जंत सबता के हाथ जिस राखे तिस कोए न मारे।

0: जैसी आज्ञा जैसा धर्म पानी बैसंतर माहे चार गुण जैसे दिखाए प्रेम नहीं को ठाओ गुरु प्रसाद आनंद सुख पाओ पुत्रा समृत में दे सस्य सुन कंदर में प्रति सबको बोला आप टुटन का मुंडो ले लाकर खेले खे मोल पाए गुण अमोल में जाके जो तारे स्वामी उद्बोध प्रसाद परम का नाम नानक कृपा और सास
1: सब सत्य

जाके माला गारा संसार करे प्रभु का जय नान पुत्रे दिन के साथे करके पापा बाम लाए अमर दान सा

0: रामकली की बार राय ब्रह्मांड तथा सत्य डूमा की एक ओंकार सतगुर प्रसाद नौकर्ता का आदर करे क्यों बोल हो वह जो की विदय है
1: नानक
0: राज चलाया सच कोट।

0: जिन पारस परस मिलायो।
1: जय जय कार जास जग अंदर मंदर पाग जुगत शिव रहता गुर पूरा पायो वड पागी लिव लागी मेदन पर सहता पै पंजन पर पीर निवारण कल सहार तो है

0: नमो चंद्र चंद्र नमो बान बाने
1: नमो गीत गीते नमो तान ताने
0: नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे
1: नमो बान बाने नमो बाद बादे
0: अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे
1: अनंगी परमाते समस्ति विभूते
0: कलंकन बिनाने कलंकी स्वरूपे
1: नमो राज राजेश्वर परम रूपे
0: नमो जो जो गेश्वरं परम सिद्धे
1: नमो राज राजेश्वर परम ब्रह्मे
0: नमो सस्त

0: नमो सर्व रोगे नमो सर्व पोगे
1: नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग
0: नमो सर्व ज्ञानंग नमो परम तानंग
1: नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग
0: नमो सर्व दर्शंग नमो सर्व कृसंग।

सर्वं प्राण सर्वं त्राण सर्वं देवं सर्वं पेवं रुआल जन्त्वे प्रसाद आद रूपनात्मूर्त जो

0: सदा सर्वसाते
1: अगात स्वरूपे निर्बाध विभूते
0: अनंगी अनमे त्रिभंगी दीर्घामे
1: निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे
0: न पुत्रे न सत्रे न मित्रे
1: न ताते न माते न जाते न पाते
0: साकं श्री के मितो मीके
1: सदैव प्रवाहे जय है जाहे
2: भगवती शांत है प्रसाद के जाहर जहूरे के हाजिर जूर है
1: हमें सुल सलाम है समस्त सुल कलाम है
2: सहद मांगे के उस तुल चराग है
1: के कामल करीम है के राजक रहीम है
2: रोजी देहिंदे के राजक रहिंद है
1: करीम उल कमाल है के हुस्न जमाल है
2: के राज गरीब निवास
1: है हरी फुल सिकन है हिरा सुल सिकन है
2: बरना से समस्त निवास है
1: अगन जुल गनीम है रजायक रहीम है
2: समस्त तुल जुबा है के साहिब के राह है
1: के नरकन प्रणास है बहिस्तुल निवास है
2: भगवान है मेसर वन है
1: तमाम मुल्तमी जैसा मसूल

0: सारे देश को देख रहे हो मत को नजदीक प्राण पति के
1: श्री भगवान की भाई कृपा उते एक रति बिन एक रति के
0: माते मतंग जय जय संग अनुप अतंग सरंग सवारे
1: को दुरंग को रंग से कूदत पौन के गोन को जात निवारे
0: पाए पचंग के पुपले बिद नवे से

0: गुंडक गुण का जान के सुंदर हिंसक ही है राज हजारे।
1: विवेक पवन के पुपत कौन करनी जाय बिचारे।
0: श्री पर श्री भगवान पजे बिनत को अंत के धाम सिधारे।
1: श्री
0: भगवान पजे बिन भूपत एक रति बिन एक न
1: लिखे।
0: पारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख लेन हलेंगे।
1: वासन माते मतंग मान मलेंगे।
0: श्री पर श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहां निदान चलेंगे।
1: वीर अपा बड़े बयार अपचारे साके ताप छया।
0: तोर देश मलिंद मवासन माते के जान के मान मलैया।
1: कार्य करंक तोन हासु पातन ही चक चांद मैया।
0: साहिब श्री सब को सरनायक जाच कने सो एक दिवैया।
1: दानव देव निनी साच पूर पवेक पवान चपेंगे।
0: जीव जिते जल में दल में बली बल में सब थाप थपेंगे।
1: पतापन पाद जय तुम पापन पद तु पापन के पपुंज कपेंगे।
0: सात समूह पर सन फिरे जब सत्र सबे अब लोग चपेंगे।
1: मानव इंद्र का जिंद्र नरादव जोन तो लोक राज करेंगे।
0: कोट स्नान गजाद गदान अनेक स्वयंबर साज भरेंगे।
1: मैं हस बिसन सचि पर अंत विसर्जन।

सिफ़न को सिफ़ गुलशुक दियो सतरन को बल मोहब्बत कियो चीटी ते कुल चरे सुला सब पर कृपा दर्श कर फूला एक एक की पीर पछाने गट गट के पट पट की जाने जब आकर करत हूँ कबू तुम्हें।

महादेव को कैर सदा से निरंकार का चिन्त न पिव तुम्हरा लखन न जाय पसारा कै बिस सजा प्रथम संसारा अंडर जेर से तजकीनी उत्पुच खान बहुर रचदीनी सगरी सृष्ट खाय चंब वा जुगा स्वरूप से अंबव दूसरी से उड़वा तो दुपाता सगल मलेश करो रण काता पुरख जमन पग परे त्यारे तिनके तुम संकट सब तारे रचा हुए ताए सब काला दुष्ट रिश्तरे तत्काला रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छाछ सके न कोई।

किल भी सकल देखो वर्ता दुष्ट लोकियन कोचा करता मन बाचत फल पावे सोई डूब नत से व्यापत कोई अढ़ल दुख दर्द पौ निकट ना तिन्नर के रहे हो जो या की एक बार चौपाई को कहे चौपाई पादर सुधि रविवार तीन सत

0: अमृत गुर ते पाया
1: पाया अमृत गुर कृपा की मी सच्चा मन वसाया
0: जी जन सब तुद पाए एक वेख प्रसन आया
1: लब लोभ अहंकार चुका सदगुरु बला पाया
0: कह नानक जिसनु आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया
1: भक्ता की चाल निराली चाला निराली भक्ता के

नीच कुल्ला जुलाहरा पयो गुणी गहिरा सो कहो तल गुर सेविया अहनिस सहज सुपाए दर्शन परसिया गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी तुद डिठे सच्चे पात साह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पात साह

0: जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो न कोए।
1: कहो नानक सुनरी मनाउ हर फावे सो होए।
0: जगत भिखारी फिरत है सबको दाता राम।
1: कहो नानक मन सिमरत है।